0: कोई जिंदगी पलों में जीता है तो कोई एक पल में जिंदगी जीता है, कोई खुशियों में हंसता है तो कोई गम में रोता है। अरे जिंदगी के इस सफर में हम सब चलते चलते थक जाते हैं, फिर भी ये साई हमारे बिना थके सदा हमारे साथ चलते हैं, सदा हमारे साथ चलते हैं।
1: जब बच्चे अपनी मां की गोद में खेलते हैं तो घंटों का समय क्षणों सा प्रतीत होता है। मां, उसी तरह तुम्हारे पास बिताए ये 2 साल 2 लम्हों की तरह गुजर गए। ओ हमारी साई मां, इस दौरान आपने हमारे लिए क्या नहीं किया। पिछले साल की शुरुआत जब हमने अकेलापन महसूस किया तो आपने हमें मां का एहसास दिया। जब हमारे आई और बाबा की चिंता ने हमें सताया तो आपने साईं बाबा बनकर उस चिंता को दूर किया। सचमुच मां, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है।

0: Bhagwan, of all the lessons that you have taught us, the crest jewel is unity. And to imbibe into us this quintessence of your teachings, you brought us to a place where each one lives for the other and all of us live for God.
1: Wait a minute. Ashutosh Pandit, are you not from the northern paradise of Kashmir? And you, Ishwar Sitaram, from the southern tip of India, Tamil Nadu. Well, not to forget you, Rohit. Are you not from the eastern plains of Bihar?
2: And you too, Advait Kadalkar, from the western corner of Maharashtra. Strange that we didn't realize these differences among ourselves.
3: Yes, Bhagwan, you have taught not only us, but the entire nation to live together, casting away all their differences, and thus experiencing the true brotherhood of man and fatherhood of God. At a time when factionism is at its peak, and when there is a desire amongst the people to break up our country into pieces, O Lord, it is you. It is only you who has sent the clarion call for unity and thus kept our nation, our motherland, united.
4: Had it not been for you, Bhagwan, what would have become of our country?
2: Kings and monarchs of yesteryears strove to bring the country under one domain through war, violence and force. But you, Bhagwan, you have won the hearts of millions and brought everyone from different nations just by your love.
0: How can we forget, Bhagwan, the lessons that you taught us, that there is only one religion,
2: the religion of love.
0: There is only one caste, the caste of humanity.
2: There is only one language,
3: the language of heart.
2: And that there is only one God,
3: and He is omnipresent.
4: For ages to come, O Bhagwan, Mother India will be ever grateful to you.
0: As a mark of our gratitude, Bhagwan, and the gratitude that Mother India owes to you, we have students from our hostel hailing from different parts of this country, echoing these same feelings.
5: From the snow-capped peaks of the Himalayas, we have Abhijit Adhikari.
6: Bhagawan, aaja samma hajurle malai je jati diseko chha tesko lagi ati nai dhanyawad chha hajur dwara sthapit yes saichik sansthan ma malai padne sunaula avasar diseko ma ma hajur prati nikai nai aabhari chhu hajur ke yes sharirik sharir sanga najikai bhai hajur sanga bolne avasar diseko ma aafulai ati nai dhanya thandachu हाम्रो देशबाट हत्या र हिंसा निर्मूलन गरिदिएकोमा म सारा नेपालीहरूको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउँदछु
7: विष्णु रोहित एन्ड श्रीराज मेनन वॉइस द फिलिङ्स अफ द स्टेट अफ केरला
8: ഒരായിരം അമ്മമാരുടെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ പ്രേമരസം തുളുമ്പുന്ന ആ കണ്ണുകൾ
9: ഒരായിരം പരി മുട്ടുകളുടെ അമൃതം കോരിച്ചൊരിയുന്ന ആ നയനങ്ങൾ
10: വൃന്ദാവനത്തിൽ നീ ചെറിയാൽ കവർന്നില്ലയോ നിഷ്കളങ്ക ഗോപികമാരുടെ ഹൃദയം
8: ഈ പ്രേമവനത്തിൽ അതേ ചെറിയാൽ കവർന്നില്ലയോ ഈ പിഞ്ചു ബാലകന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ
9: കരുണാസാഗര നിൻ കൃപയാൽ പ്രേമം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു
10: നിൻ അലവട്ട കൃപാസമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ധന്യമായി അമ്മ
8: നിൻ കാരുണ്യവർഷത്തിൽ
9: കുതിർന്നു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക്
10: നന്ദി പറയാൻ
8: Echoing
2: the feelings of Punjab, we have Saranj Tandon.
11: Swami, assi hamesha sach kahange, te sach hi sunange. Assi chook nu chhatke swami, tuhadi sharan lavange. Dharam hi hovegi saadi pehchan, paave mushkil vich pave jaan. Tusi vadana saadi himmat, karna saada kalyan. Aman shanti da tuhada nara, duniya nu samjhavange. ਵੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
1: ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਐਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਯੂ ਓ ਲਾਰਡ ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਂਡ ਸਾਈ ਉਦਵ Echo these feelings.
2: Swami,
12: நீங்கள் தாய் என்றால் நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள். நீங்கள் குழந்தை என்றால் நாங்கள் உங்களை விளையாடும் பொம்மைகள். நீங்கள் தாயானாலும் குழந்தையானாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய கையில் சுவாமி.
1: சுவாமி, ஒரு தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் நண்பனாய் நின்று எங்களை காக்கும் இறைவா, தங்களிடம் எங்களுடைய அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துவது? 100 ஆண்டுகள் குடிநீர் எங்கே, எங்கே குடிநீர் என தேடி அலைந்து தவித்த சென்னை வாசிகளுக்கு சுவாமி நீங்கள்தான் மனமுருகி கருணையோடு கொண்டலிரு நீரை அளித்து அவர்களின் கண்ணீரை துடைத்து இன்பக் கடலில் ஆழ்த்தினாயே. நீயே எங்கள் கலியுக வரதன் கண்கண்ட தெய்வம்.
13: சர்வ தேவதாதீத்த சொரூப ஸ்ரீ சச்சிதானந்த மூர்த்தி, அவ்யாஜ கருணாமூர்த்தி, அகண்ட காருண்யமூர்த்தி, கர்மத்வம்சன், காரணம் பாராமல் கருணை புரியும் கடவுளே, கண்களின் தயையால் எப்போதும் நீர் நிறைந்தவரே, தன் பாதங்களை வணங்குவோர் அகத்தின் இருளை நகத்தின் காந்தியினால் நீக்கும் கலியுக வரதா, கண்கண்ட தெய்வமே, எப்போதும் நான் உன் திருவடியிலேயே இருக்கும் மாறு அளிப்பீர். அபயம் தேவா, அபயம் இறைவா, அபயம் அன்பே.
0: And what do Prantik Sen and Abhishek Banerjee from the state of West Bengal have to say?
14: Achha Prantik, bolo to swamir kache ese amra ki sikhte peichi?
15: Ha nischoy Abhishek, swamir kache ese amra jibon mullo shikechi ar or mohotto bujhechi.
14: Ekdom thik bolle. Ar ei jibon mullo amader sonmargo dekhiye bhalo manush banate sahayota korbe.
15: Ar ei 2 bochhor je amra swamir sathe thekechi seta amra jibone kokhono bhulte parbo na.
14: Swami, amader ei ashirbad dao কি তুমি যে আমাদেরকে নিজের সম্পত্তি আর সাই সেনার সৈনিক বলে সম্বোধিত করেছো
15: সেটা যাতে আমরা আমাদের জীবনে সার্থক করতে পারি। স্বামী, জননী রূপে পেয়েছি তোমায় জীবনের সব কঠিন সময়, পিতার শাসনে রেখেছো বেঁধে দাওনি হতে জীবন বৃথে।
14: স্বামী, মোরা তোমার ছাত্র, পড়তে এসে জেনেছি জীবনের মূল মন্ত্র, কৃপা কর মোর সায়রাম তব শ্রীচরণে মতি যেন থাকে অবিরাম।
15: যেখানেই থাকি থেকো সাথে প্রভু, এই মোর প্রার্থনা, তোমার স্মরণে এত আনন্দ যা নেই কোনো তুলনা।
14: আশীর্বাদ এই চাই তোমার মিশনে যেন যোগ দিতে পাই,
15: অন্তিমে জানাই তব শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম, হে প্রভু তুমি আমাদের প্রাণ।
12: মহারাষ্ট্র পেজ ইটস হোমেজ থ্রু দ্য ভয়েস অফ চন্দ্রশেখর।
16: বাল সাইন্সে খোড করতে সবংগড়ি ন ঐকতি, মুক্যা বিচার্যা বেড়কানা पकडून ते छळती, बिनवोनी त्यांना सांगितले किती प्रेमान्य साईंनी, तरीही बेडके टोपलीत ठेवियले होत्यानी, परमसुमंगल साईंच्या दिव्य संकल्पाने बेडक बनले कपोत आणि झेप घेती गगनी, झेप घेती गगनी, सदा विषय सुखाच्या डोही आणि अज्ञानाच्या कर्दमी असे सदा लोळतो आम्ही, पर दिव्य स्पर्श साईंचा उद्धरितो आपल्या जीवा, मुक्तीचा मिळतो मेवा, त्या स्पर्शाने सुंदर शुभ्र कपोत आम्ही बनतो, त्या स्पर्शाने सुंदर शुभ्र कपोत आम्ही बनतो आणि अध्यात्माच्या दिव्य गगनी झेपकी हो घेतो, झेपकी हो घेतो।
0: अँड फायनली फ्रॉम दिस सेक्रेड लँड ऑफ आंध्र प्रदेश वी हॅव रविकांत।
17: इदि ना कद ओकप्पटि ना व्यद, అర్ధరాత్రికంతు లేదు, హోరు గాలి కలపలేదు, ఎడారికి కనలేదు, నా బాధకు వెరపలేదు, పట్టించుకోని పట్టణాలు, పారిపోమంటున్న పల్లెలు, ఆశ చెరిపిన కాగితం, బాధ నలిపిన నా జీవితం, ఇదంతా ఒకప్పటి నా కథ, ఇదంతా ఒకప్పటి నా వ్యధ. ఆ నేత్రాలు నా హృదయాన్ని పరిశీలించాయి, నా హృదయాన్ని ప్రతిబింబించాయి, నా జీవనానికి బాటలేశాయి, నా భావనలకు రూపుగీశాయి. ఆ నేత్రాలు అంతెరిగని ఆనంద సాగరాలు, ఆ నేత్రాలు అలుపెరిగని కరుణా ప్రవాహాలు, ఆ నేత్రాలు నా ప్రాణదీపాలు, నా హృదయ గగనాలు. ఆ స్పర్శ నా కన్నీటిని తుడిచింది, నా బాధను చెరిపింది, నా మదిని తాకింది, నా ప్రేమను ప్రేరేపించింది, మనసు తులకరించింది, మనసు పులకరించింది, మనసు నృత్యించింది, మనసు గర్జించింది, మనసు స్తంభించింది, మనసు స్పందించింది. నేను కాని నేను, నన్ను కాని నన్ను, నాది కాని నాది చెరిగింది, తరిగింది, వదిలింది. అప్పుడు నా భాష నిశ్శబ్దం, నా ప్రేమ అనంతం, నా రూపు అఖండం, నేనే సత్యం, నేనే శివం, నేనే సుందరం.

0: ऋषभ, हमें ईश्वर का है 2 साल बीत गए, क्या तुम्हें अपने आप में कोई बदलाव मालूम पड़ता है?
1: वाह गीत, क्या प्रश्न पूछा। जानते हो, इस जगह में रहते मैंने एक चीज जरूर महसूस करी है, वो है मुझ में बदलाव।
0: क्या तुम्हें कोई मधुर पल याद है जो हमने अपने प्यारे स्वामी के साथ बिताया हो?
1: हाँ गीत, पता ही नहीं चला कि ये 2 साल कैसे बीत गए। जानते हो, मैंने एक बार स्वामी से पूछा, स्वामी मुझे मेरा व्यवहार सुधारने की शक्ति प्रदान कीजिए, और स्वामी ने बड़े प्रेम से मेरी पीठ थपथपाई और कहा, आई एम वेरी हैप्पी। इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, परंतु अब भगवान का संकेत मुझे साफ मालूम पड़ता है। मेरे भगवान मुझे इस राह पे चलने तथा आगे बढ़ने में बढ़ावा दे रहे थे।
0: हाँ, और तुम्हें वो दिन याद है 2 साल पहले वृंदावन से लौटने के बाद स्वामी ने हम बच्चों से पहली बार बात की थी। उस बातचीत के दौरान स्वामी ने हमसे कहा था, हम उनके बच्चे, उनके सब कुछ हैं। उस वक्त स्वामी हमारे मन में एक तरल भाव सा उठा, आप हमारे स्वामी, हमारे प्राण हो। आपने हमें हंसाया और खुशियों से रुलाया,
1: आपने हमें डांटा और फिर प्रशंसा भी की।
0: कठिन समयों में आपने ही हमारा साथ दिया,
1: अच्छे समय में आपने ही अपना हाथ दिया।
0: माँ बनकर हमें अपने ममता के आंचल में समा लिया,
1: पिता बनकर अपनी बाहों में डाल लिया।
0: स्वामी, ये जगह है मोहब्बतों की,
1: मोहब्बत हम और तुम की।
0: इस प्यार में डूब जाने को दिल चाहता है,
1: इस दिल में हरदम यही प्यार रह जाता है।
0: कभी न होने देना हमको तुमसे जुदा,
1: क्योंकि हम तुम पर हो चुके हैं पूरी तरह फिदा।
0: आपको पास पाकर हम दुनिया के इस स्वर्ग में रह रहे हैं,
1: आपके साथ रहकर हम अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं।
0: तभी हम कहते हैं, शान से जियो साई के लिए,
1: प्यार से जियो साई के लिए। तो भाइयों, क्या हम बोल सकते हैं,
0: शान से जियो
1: प्यार से जियो,
0: इस बंधन को सदा बनाए रखो,
1: ना मरो, सिर्फ जियो साई के लिए।
2: स्वामी, इन अ 10th स्टैंडर्ड
3: एट द एंड ऑफ अ सिमिलर प्रोग्राम वी टोल्ड यू थैंक यू स्वामी, एंड देन यू टोल्ड अस फॉर व्हाट, एंड देन वी टोल्ड यू फॉर ऑल दैट यू हैड गिवन अस। एंड ब्रदर, डू यू नो व्हाट स्वामी सेड?
2: बिकॉज भगवान, यू लुक डीप इन टू आर हार्ट्स, and in a moment of eternal testimony to your love, you told us, thank you for what? It is my duty. What else can be the definition of a mother? Because Bhagwan, you gave us the love of 1,000 mothers, the care of countless fathers, the solace of a true friend, the guidance of an eternal guru. As we grow up, Bhagwan, we miss the times when you'd walk down the aisle and with a stern look on your face, tell us children, shh, keep quiet.
3: We miss those times when you used to tell us, don't sit like this, sit straight.
2: We miss the time when you used to call 4 boys for prasadam, and 6 would get up, and yet with a twinkle of pride in your eyes, remark, see my boys, how disciplined they are.
3: Those times when you would come down and ask us, what was the breakfast? And every single time, remark that we must eat more. Why go down the memory lane so long? Two days back, Bhagwan went out of his way to give us clothes and make us happy.
2: Bhagwan, you are everything to us. As we grow up, Bhagwan, we realize that coming to you was not about learning A for apple, B for bag, C for cat. It was not about 2 1s are 2 or 2 2s are 4. It was something very different. It was something and everything about you.
3: Swami, if we were to make a garland of all that you had given us, of all our memories with you, Bhagwan, even this gigantic earth would be too small to wear it.
2: Bhagwan, we are grateful to you, not just for what you did, but for that loving way that you did it for us.
3: Swami, you gave us our identities.
2: You molded us into what you wanted us to be.
3: You gave a meaning to our lives, Bhagwan.
2: Bhagwan, at this point of time, we realize that there are just 4 letters that truly describe what all you mean to us and what our heart-to-heart relationship really means. 4 golden letters.
3: L-O-V-E.
2: Love.
3: True and pure love.
2: Love, Swami.
3: And Swami, today we can tell you one thing from the bottom of our hearts, that at every step and every stage of our life, we need you, Swami.
2: But most of all, Swami, we love you, Swami.